0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ব্যাংকিং খাইমত বিলে চি এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং গোপে বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম ক্যারে নেপ্রে ছালি জানকারী রি বিষয়া নো কল পরিমো সময় নো ঠকদিল খামো ব্যাঙ্গর বে কর্মচারী বীরা নো দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাংকি নীল পরিমো নো তানি সতর্কতানা ঠদরে ক্যা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাঙ্গর ক্যালে জনহিতারী জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদাই ভাইলাই
2: तिम्रो जन्मदिन को अवसर में यो औठी उपहार तिमीलाई।
3: वाओ, कस्तो राम्रो डिजाइन को अनि कति चमकिलो, कहाँ बनाएको नि डार्लिंग?
2: अब तिम्रो लागि दिने उपहार पनि अन्त बनाएर भयो त, उही हाम्रो चिर परिचित जय बुद्ध ज्वेलरी मा बनाएको नि।
3: मलाई त एकदमै मन पर्यो।
2: तिमी हेर्दै मात्र जाऊ न, अझ हाम्रो विवाहमा त सुनको हार, मंगलसूत्र, सिक्री, टप, जन्तर, चन्द्रमा, छड्की तिलहरी, चुरी, बिन्दिया, चाँदीको पाउजु अनि सबै गरगहना जय बुद्ध ज्वेलरीमा नै बनाएर ल्याउँछु नि।
4: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनबाट बनेका आधुनिक डिजाइनका रेडिमेड तथा अर्डर अनुसारका गरगहना, राशि अनुसारका पत्थर, चाँदीका सामानका साथै पुराना गरगहना साटफेट तथा सुनसादी खरिद बिक्रीका लागि
5: जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर लमजुङ एलजी डिलर सँगै प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा फोन नम्बर 0665245475 विश्वास तपाईँको सेवा हाम्रो।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: అమ్మా, మా ఫార్చూన్ అయి
1: వాడరికి ఆర్చెస్
0: బిగోర్చిను.
2: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी शहरमा यही साउन एक गते शुक्रबारदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ. नेपाली कथानक चलचित्र गौथली
3: तिमीले पढ्न आउँछ माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अंग्रेजीमा?
0: आई लभ यू.
2: समय मध्याह्न 12 बजे, दिउँसो 3 बजे र साँझ 6 बजे.

0: ब्यूटी आर्ट, हेयर स्ट्रेट, ब्राइडल मेकअप, मेनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलर, हेयर कटिंग, क्लिन्सिङ सँगै ट्रेनिङ को समेत व्यवस्था रहेको छ।
1: प्रोप्राइटर तारा गुरुङ, मीरा ब्यूटी जोन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, विशेषा नगरपालिका सात, पुरानो बैंकसोक, लमसुङ। सम्पर्क 9841626344, 9841626344।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 5

0: सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN.
1: This is the BBC. There are no